गाँव आरु सिकायुरी होमी चिर पीछो मुझे हार मुखे जहा सुबी रुखो दो चिर पीछो मुझे।